मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करना है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर

सिमरन करद्या दुखां दा भार उठ गया, जिवें शरीर हलका उठदा जा रहा, शरीर उठदा जा रहा, शरीर आकाश वल नहीं, आकाश वल नहीं। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

अंदर बोल दी, अंदर आवाज नहीं आ रही। रसना सिमरन सूक्ष्म हो गया, रसना जप रही लेकिन आवाज नहीं आ रही, जिमें कह लो खामोश आवाज। वो आवाज जिहड़ी एक कन नहीं सुन दे, जप रहे हो ते एहसास कर रहे हो कि शरीर दे अंदर गूंज हो रही। सूक्ष्म सिमरन सूक्ष्म हो गया, सिमरन हौली हो गया लेकिन अंदरों पावर वध गई, अंदरों पावर वध गई, अंदरों गूंज

रचना भी बंद हो गई, होंठ भी बंद हो गए, होंठ भी बंद हो गई, रचना भी बंद, जीभ तालू नाल लग गई, जिमें जड़ हो गई हो गई, जड़ हो गई जीभ। हुण सिमरन होर भी सूक्ष्म हो गया, जीभ नहीं हिल रही, रसना दे अंदर दियां सूक्ष्म नाड़ियां जेड़ियां बाहर नहीं दिसती, अंदर उन्हां नाड़ां विच

जपरे, रोम रोम जपरे, रोम रोम जपरे। अंदर पुकार पैदा हो रही, अंदर प्यास।

0: गुरु साहिबां दी साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ आओ रसना पवित्र करिए पातशाह दी बख्शी फतेह दी सांझ करो ते सारे गज वज के आखो जी
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: बाबर बादशाह दी करड़ी कैद अंदर गुरु नानक ने पीसियां चकियां सन तत्ती तवी ते बैठ के गुरु अर्जन नीहां कौम दियां कीतियां
1: पक्कियां सन।
0: मीरी पीरी दे मालक पातशाह ने जुलम राज दियां उड़ाइयां फकियां सन तेग बहादुर हिंद दी बन चादर पत्ता लहंदियां अनेकां
1: ढकियां सन।
0: जदों सारियां हिलियां तो गल लंगी तेगा गुरु गोबिंद ने
1: चुकियां सन।
0: प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मोहम्मद लतीफ लिखता है The death of Guru Arjan is a great turning point in the history of the Sikhs. Pav Guru Arjan Dev Ji di shahadat Sikh itihas vich bada vadda mod sabit hoi. Pancham Patshah Guru Arjan Dev Ji di shahadat to baad 11 saal di umar chardi jawani chheve Patshah Guru Hargobind Ji Maharaj Guru Gaddi utte baithe. Bhai Gurdas Ji likhde han पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरुपारी अर्जन काया पलट के मूरत हरगो बिंद सवारी चली पीड़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा बड़ योदा
1: बहु पर पुकारी।
0: गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा योदियो चंगे शस्त्र घोड़े अते जवानियां भेट करो। अमृतसर साहिब इलाही फौजी छावनी विच बदल गया। 1609 ईस्वी विच गुरु पातशाह ने अकाल तख्त दी सिरजना कीती। साहिबा ने कहा एक ढाडी जथा मंगवाया जावे। भाई विधि चंद जी नथे अते अब्दुल्ले दे ढाडी जथे नू लेके आए। जदों नथे ने फेरिया संगी ते गज ते अब्दुल्ले ने मारिया ढड ते हथ तां सूरमियां दे डौले फरक ला दिते। फिर जदों लगियां धौंसियां ते चोटां तां पंजाब दी सर जमीन गूंज उठी। गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने मीरी ते पीरी भगती ते राज शक्ति माला ते खंडा जोश ते होश शांति ते क्रांति बाणी ते कुर्बानी सब एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठियां खेप।

पेंदे खाने क्या शहनशाह सलामत, मैं गुरु कोल नौकर सा। मेरी 6 महीने की तनखा रहंदी सी, जदों मैं तनखा मंगी तां गुरां ने मैनू कोरा जवाब दे दिता। मैं बादशाह सलामत कोल फरियाद करन बारे कहा तां मेरी बेइज्जती करके मार कुट के दरबार विचों तक्के दे के कढ दिता। गुरु ने गुस्से विच आके जो कुछ हजूर दी शान दे खिलाफ कहा, मेरी जुबान बयान नहीं कर सकती शहनशाह। वो अपने आप नू सच्चा पातशाह ते हजूर नू झूठा बादशाह कहंदे। जिन्ना भी हो सकिया पेंदे खाने गुरु जी दे विरुद्ध कहा। बादशाह दे दिल विच पहला ही गुरु साहिब वास्ते साड़ा सी। वो पेंदे खान दियां गल्लां सुन के भड़क उठिया ते उसने अपने जरनैल काले खान नू बुला के गुरु साहिब ते हमला करन दा हुक्म है।

के मेरी चोली किसी ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा उदी चोली कदी खाली रह नहीं जाऊंगी। ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर की जाऊंदा। सत सिमत बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु।

देग रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया का दिलों का हाल जानता है, क्योंकि तू अंतर जामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाण। तेग रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया के ताज का मालक है, संसार का मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु के पाने मनन वाला है। सात संगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदों आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 के करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदों अमृत वेला होया ते साहब जी ने आख्या, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया तां सानू कीर्तन सुना। सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा दा भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हो, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे हैं। सत सगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति होई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख के चरणों में शीस चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता। साहब जी कहन लगे, दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते। दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणा दे नाल कीर्तन विच जुड़े हन, उसकी जड़ी भगती की है, असी ए सौदा सस्ता कीता है। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नूं शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं। आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी। हिंदू धर्म की रखिया की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर का किला उजड़ गया, चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी
बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां सिखां दे उपरों धर्म दी रक्षा दी खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म दी खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया, आ सारा सरबंस दान कर दिता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सत सगत बोलो श्री आख्या। और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मना दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां हुईयां, ए अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी, दो दो चार चार सिंह करके जाऊं बार, ते दुश्मना दे कई दलां दे दल नूं मार मुकाऊं, ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं। उस वेले जिस वेले बेअंत फौजां ने दुश्मन दी चमकौर दी कच्ची गड़ी नूं घेरा पा के खलारिया, ते आप घोड़े ते चढ़ के आवाज दे के गए कि हिंद दा पीर जा रहा, जे जे किसे विच हिम्मत होवे ता उसनु रोक के दसो। सात सगत बोलो श्री। अनेकां नू साहब जी दी तलवार त्या शो प्राप्त होई, दुश्मना दे सिर वाह के साहब जी उस चमकौर दी कच्ची कड़ी विचों अगा लंघ गए, दुश्मन घेरे ने तोड़ छड़िया। तेरे वर्गा शुरवीर होर कौन हो सकता है, तेरे वर्गा भगत संसार विच कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा दानी कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा शुरवीर कोई नहीं। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं, मुसव्वर खेंच ले तस्वीर ये तुझको रिसाई है, दसम गुरु बैठे मसलत पर सभा अपनी लगाई है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, मिला तुझ सा मुझे मुर्शद मेरी तकदीर अच्छी है। सत सगत बोलो श्री। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी उस्तत करदे हुए भाई साहब भाई नंद लाल जी

साहब इस श्लोकां दे विच इस मिथ्या संसार दे उते ब्रह्म ज्ञान बख्श रहे त्याग

0: गुरधामा की बेअदबी करके दिल का साड़ कढ़न लगी। पर खालसा जी सिख कौम सिदकी परवानिया की कौम है, ते परवाने कदे भी मौत तो डरिया नहीं करते, अपने प्यार पिछे जान कुर्बान कर देंदे हन, ते कुर्बानिया तो बाद इनकलाब आउंदा है। इनकलाब ने कदे भी रुक सकदा, ए पता नहीं कदों तरथल पै जाए, अत्याचार सरकारी भी नहीं रहना, ए भी पता नहीं कदों को
1: ठहर पै जाए।
0: ओ कौम ने मारिया मुक सकदी, जिस कौम नू मरन दा चल पै जाए, मुल पेंदे ने सदा कुर्बानियां दे, पावे अज पै जाए ते पावे
1: कल पै जाए।
0: जदों लाहौर दे गवर्नर खान बहादुर जकरिया खान ने सिंघां दे सिरां दे मुल रख दिते, तां लालच विच आके मंडियाले दा चौधरी मस्सादीन रंगड़ लैके पुलिस दीआं गार्दां सन 1740 ईस्वी नूं अल्लाहू अकबर दे नारे लाउंदा होया आ हरिमंदर साहिब ते काबज होया। पापी ने पावन बीड श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पाड़ के लीरां लीर कर दिता, ते पावन बीड दी थां अपना पलंग डाह के बह गया। बाणी दी थां नाची गंदे गाने गाउण लगी, अमृत दी थां शराब ते देग दी थां बकरे हलाल होण लगे, जालम हुक्का पी पी के पाण चब चब के थुक दियां पिचकारियां परकर्मा विच मार दे, जालमा ने मिट्टी पा पा के पावन सरोवर नूं पूरना शुरू कर दिता। जदों ए हालत पिंड कंग दे रहण वाले सरदार बुलाका सिंह ने देखी, तां सिंह दे सीने विच अग लग गई, पर किसे सियाणे दे कहण ते दिल नूं काबू विच रख्या ते जंगी खालसे नूं खबर करन वास्ते तुर पिया, क्योंकि सिंह उस वक्त पहाड़ां दीआं कुंदरां या जंगलां बेलियां विच लुक छिप के अपना समा गुजार रहे सन। सिंह कंसोआ लैंदा होया बीकानेर दी धरती ते पहुंचिया, ते उत्थे जाके बाबा श्याम सिंह नारली ते जथेदार बुढ़ा सिंह जी नूं मिलिया। जदों जथेदार बुढ़ा सिंह जी ने पंजाब दा हाल पुछया, तां सरदार बुलाका सिंह दीआं अखां विच पाणी आ गया। जिस तरह सरदार बुलाका सिंह रो रो के हरिमंदर साहिब दी बेअदबी दा हाल दस रहा है, उस समय दे दर्दनाक दृश्य नूं बड़ू साहिब दीआं बीबियां दा ढाडी जथा आप जी दी सेवा विच

क्योंकि अवकाश बासन तने दर्ख की न तहाई नवासन घने बर्ख की न तहाई नवासन लवी जित गए ते कुशी हार गए कुशी जड़े ने कांशी विच आ गए बह गए कुशियां ने कांशी दे विच आ के बेदरत याद कीते वेदां दा पाठ सुन सुन के पढ़ पढ़ के ए फिर कांशी विचों जदों महान पंडित बन गए ना इन्हां दा नाम पै गया बेदी ते लवी वंश वालियां दा नाम पै गया सोढ़ी ए सोढ़ी ते बेदी बेदी वंश चों गुरु नानक देव जी महाराज ने अवतार धारिया ते सोढ़ी वंश विचों साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अवतार धारिया कहिंदे वी बेदियां दा ते सोढ़ियां दा मिलाप हो गया बड़े पंडित बन गए महान विद्वान इन्हां ने आके वेद दियां रिचां उपांगां उच्चारण कीतियां इस राज दे अंदर ते लवी बड़ा प्रसन्न होया कहण लगा तू कौन है कहिंदा मैं तेरा भरा जिसने मार के भजाया सी तू मार के भजाया सी ना मैं ओ हां कहण लगा मैं तेरे वेदां नूं सुन के बड़ा प्रसन्न होया तू ब्रह्म दी ज्ञानता प्राप्त कर चुका तैनू मैं राज भाग सौंप दिता अज तो ए साडा राज भाग तेरे हवाले कर दिता जिन वेद पठियो सो बेदी कहायो तैन धर्म का कर्म नीके चलायो ते वेद पढ़न दे नाल ते सुनन दे नाल सारे दा सारा राज भाग महाराज बेदी ने बेदियां नूं दे दिता लवियां ने ते बेदी कहण लगे वी महाराज तुसी वड्डे भराता हो सानू हुण तुसी राज दे दिता ए साडे सिर उपर एक करजा है ते असीं ए राज तुहाडे वापस देना ही देना तुहाडे हवाले तुहाडी अमानत करनी ही करनी है फिर कदों करिए ते बेदी कहण लगे भाई पहले जन्म ते असीं आवांगे गुरु नानक दा रूप धारण करके साडी वंश विचों उत्पन्न होणगे पहला दूजा तीजा वंश जदों चल पाएगा ना ते चौथे जन्म दे अंदर जदों गुरु होवांगे गुरु रामदास दे नाम दे नाल तेरा प्रकाश होएगा लाहौर शहर दे अंदर तेरा नाम होएगा रामदास चौथे जन्म विच आके तैनू असीं दित्ती होई अमानत वापस कर देंगे तैनू गुरु थापना कर देंगे गुरु थाप के तैनू संसार दे विच दित्ती होई अमानत तेरे हवाले कर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ी वड्डी ये विचित्र नाटक है बड़ी महान रचना है समय दे अंदर पूरी नहीं होंदी ये जिहड़ी वार्ता दो ढाई घंटे की लंबी वार्ता है इस करके साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह महाराज कहिंदे इत्थों तक अकाल पुरख महाराज दे चरणां दे विच बिणे होई उन्हां दे सामने ए वाक होया ते अकाल पुरख ने सारी दी सारी वार्ता सुना दित्ती भई हुण तैनूं संसार विच अवतार लैणा पैणा ना तू पत्थरां नूं पूजक होएगा कहो प्रभु सुभाख हो मैं महाराज अकाल पुरख नूं कहा की कहा किसू ना कान रख हो किसू ना भेख बीज हो अलेख बीज बीज हो मैं किसे दे भेख विच नहीं भेजांगा पत्थरां दी पूजा नहीं करांगा महाराज तेरे पंथ नूं तेरे वंश नूं संसार विच उत्पन्न करांगा उसका नाम होएगा खालसा ए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वाक कीता ए जिहड़ा नाराज छंद जिहड़ा लिखिया होया आप जी दे पास गरीब नवाज साहिब सचे पातशाह महाराज कहिंदे ए अकाल पुरख दे सामने एक मैं प्रोमिस कीता ओ मैं पूरा कर रहा ते खालसा बना रहा खालसा संपूर्ण होके पत्थरां दी पूजा नहीं करेगा जटा जड़ी है सिर ते नहीं बनाएगा किसे अकाल पुरख महाराज नूं छड के किसे होर दी पूजा विच नहीं रुझेगा ए मेरे खालसे दे प्रति मेरी एक बिनय है जिवें मैं अपने अकाल पुरख दे चरणां च इक बिनय कीती सी लिख दें।

बड़ा जुल्मी बादशाह सी। औरंगजेब ने हिंदुस्तान दे लोकां ते इतना जुल्म कीता कि हद मुका दित्ती जुल्म दी। हिंदुआं नू जबरदस्ती मुसलमान बनान लगा, मंदिर तोड़ने शुरू कर दिते। इतना जुल्म, धार्मिक रौ रीतां ते पाबंदी लगा दित्ती गई। उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान दे के हिंदू धर्म की रक्षा की थी, और फिर आप अपने हाथ विच कृपान फड़ी और हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब नूं ए गल कही, तेरे जुल्म दी अत हो चुकी है, ते हुण मैं इस कृपान दे नाल तेरा जुल्म खत्म करांगा। और सचमुच गुरु साहिबां ने मुगल राज दियां जड़ां पुट के रख दित्तियां। हिंदुस्तान विचों मुगल राज दा हमेशा वास्ते खात्मा कर दिता। इतिहास गवाह है कि गुरु साहिबां दियां कुर्बानियां ने इस जुल्मी राज दा अंत कर दिता।

तू कोई भी है किसे भी जात दा, तू अमृत छक ले तेरी हुण कोई जात नहीं। इको वर्गा रूप दिता और हुक्म कीता कि जिन्हें जुलम दे खिलाफ लड़ना है, जातां पातां तों उत्ते उठना है, मनुखता दी सेवा करनी है, आओ मेरे नाल खड़े हो जाओ, एथे मर के जीवन मिलदा है, इज्जत गुआ के जीवना को जीवना नहीं।

जी महाराज इकले ही आनंदपुर साहब नूं वापस मुड़ पए। उधर दुश्मन भजा जा रहे, तीन चार मील दुश्मन भजदा गया, पर अगे जाके ओ दुश्मन डट के खलो गया, क्योंकि जेड़ी फौज 3-4 हजार ओ पिछा छड़ के आए सन ओ उथे खलोती हुई सी। दुश्मन डट के लड़न लग पया, अगे ते सिंह दुश्मन नु पजांदे आ रहे सन, ते हुण सिंघां दा पैर पिछे पैण लग पया। जद पैर पिछे पया तां ख्याल आया कि गुरु किथे, पिछा मुड़ के देखिया पर दूर दूर तक गुरु साहिबां दा कोई पता नहीं। हुण दिल होर टुट गए, जित दी खुशी विच गुरु दा कहिआ नहीं मन्निआ, गुरु साथ छड़ के चला गया। जे गुरु वापस ना आया असी कदी भी जित नहीं सकदे, और गुरु तो बगैर असी कुछ भी नहीं। फैसला करके 5 घोड़सवार पजाए, जाओ गुरु नु मोड़ के लियाओ। घोड़सवार भजे, नौरंग सिंह घोड़ा पजा के गुरु साहिबां तो अगे निकल गया। परिक्रमा कीती, घोड़ा पजांदे होए ने घोड़े तो काली नाल छाल मारी, अते उची सारी नीले घोड़े नूं कहा, ओ नीले आ तेनू 100 बाजां वाले दी जे एक कदम भी तू अगे पुटिया। गुरु दी सौ सुनी, नीला घोड़ा उथे रुक गया। नौरंग सिंह ने गुरु साहिबां दे चरणां ते सिर रखिया ते कहा, पातशाह जित दी खुशी विच तेनू भुल गए, पर हुण पता लगा तेरे बगैर असी कुछ भी नहीं। साहिबां ने घोड़ा उसे वेले वापस मोड़ लिया और हवा दी तरह घोड़ा पजाया। उड़दी धूड़ विच कलगी दी लिशक सिंघां ने देखी, लालियां चढ़ गईयां, आ गया बाजां वाला, आ गया साडा कलगियां वाला, हौसले वधे। ऐसी साहिबां ने तीरां दी मार मारी, देखदियां देखदियां दुश्मन दा नाश होया, गुरु साहिबां दी जित हुई। हुण सारे सिंघां ने गुरु साहिबां कोल खिमा मंगी, तां साहिबां ने इक गल कही, सिंघो इक गल याद रखो, इक दी आग्या मन्नोगे, इक दे पिछे चलोगे, इक अकाल पुरख दी ओट रखोगे, ते दुनिया दी कोई ताकत तुहानू हरा नहीं सकेगी। अगर तुसी सारे वखरे वखरे राह बना के चलोगे, ते फिर याद रखो मैं तुहाडा कदी भी साथ नहीं देवांगा। क्यों? मैनू सिख प्यारा नहीं, मैनू रहत प्यारी है, असूल प्यारे ने। ते जिहदे असूल नहीं, जिहड़ा रहत विच पक्का नहीं, ओहदा ते मेरा संबंध कोई नहीं। अज सिखां दा इसे वास्ते ए हाल है, कई दल कई आगू कई राह, पर गुरु साहिबां दा फैसला है, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जदू तक सिख सचमुच सिख बनेगा।